सतनाम श्री एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अग्नि सह भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच

0: तुमरे पाठ से जिवें ज्ञानी जी ने विश्राम लाया है, हम बारिक परत प्रत पारे तुमरे, तुमरे ते ही विश्राम लाउणा। तू बड पुरख पिता मेरा माया,
1: रहाओ हर के नाम असंख अगम है।

रिद शुद्ध मिले खोटे पशु तन हा तुम हर दाते समर्थ स्वामी एक मागो तुझ पास हर दन जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै सा।

अर्हाव पंचतस्करत अवतराखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जात सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा धीरज कर गौ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह प्रभाती महल्ला पहला आव

ऐसा बुझै कोई। नाव प्रभातै शब्द ते आई है, छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला, मन मान माया।

0: चहो छे मह सन्यासे जोगी कापड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रत्ते पूरे बैरागी हौ हठ हस्त मह भीख्या जाची एक पाए लिव लागी रहाओ ब्राह्मण वाद पड़े कर किरिया करनी कर्म कराए।
1: ब्राह्मण वाद ए ब्राह्मण वाद कठा नहीं पढ़ जाना जिमें उचारण किया है ब्राह्मण वाद पढ़ है जेड़ा वाद तो भाव साध संगत जीओ झगड़ा ब्राह्मण झगड़े विच पैंदा है वाद दा अर्थ इत्थे झगड़ा है। एक हुण अपना नवां शाल जेड़े चल पिया ब्राह्मण वाद कहिंदे आपां सो साध संगत जी ओ एक अलग विशा है इत्थे वाद दा अर्थ झगड़ा है। ब्राह्मण वाद पढ़ै कार किरिया करनी कर्म कराए
0: बिन बूझे किछ सूझै नाही मनमुख विछुड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचाचारी साची दरगह माने अनदिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संजम जप तप तीर्थ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मिलाया दुख परा छतकाल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत।

हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख भौजल डुबदे काढ़ लेह प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा एक खेन हार प्रभ कृपा धारी गुण गाय।

तना मस्तक उजर टीका हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यों विच उड़वा सास कीका जिन हर हिरदय।

तुम वाड अगम अगाद बोध प्रभ मात देवह हर प्रभ लहे जन नानक काओ गुर हाथ सिर धरियो।

करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल का प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वरियां का हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नू कहिंदा है तू जपया कर जल हरनाकश थर हरनाकश, जब तू जपेगा तो तेनों देख के बाकी बच्चे भी जपनगे। ते 7 वरियां का प्रहलाद कहिंदा है बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। ये 7 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करता है और 60 साल का बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है। बच्चियां विच कदी कदाई कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़ियां विच बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी मर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। जिंदगी एवें गवाई जाते। ताश खेडदे होयां नूं एक सज्जन ने पूछ लिया की कर रहे हो, समा पास पै करदे आ। फिर मैनू विचकार बोलना पिया, समा रहा भी है, तुसीं ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नूं सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया। अजू समझ कुछ बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़े तो संभाल कर ले। पर नहीं, अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने बुजुर्गी बा अकल अस्त, नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त, नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोल इतने मकान ने, इतनिया महल माड़ियां ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहते ने ए अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है, दिल तो नापो। मुहम्मद साहब दे निकटवर्ती हजरत उमर ए बसड़ा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर हो, नखलिस्तान उसनों कहने जिते 4-5 दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहते ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन, उठ नूं दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे एक भिखारी आ गया। भिखारी नहीं सी पर चूंके मंगदा पिया सी, इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया हजरत मैं 3 दिन का भुखा। कूत शहर दे च मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हाँ, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता ले, पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार है, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आखिया, तू 3 दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ए ले तू। उस मनुख ने आखिया, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है, अमीर मनुख। दोपहर का वक्त सी, महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे ने, नाल चेला है आनंद, जो रिश्ते दे चचेरा बिरा सी, चेला बन गया सी, नाल सी। उन्हें करमंडल पानी का नाल भर लिया, बई दोपहर का वक्त बया।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

निरंकार है नहीं लगे नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना करप नो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दियाइए को रहना पर ये पाइए को रहना पर ये पाइए।

पौड़ी सेब की दिशन तो खीज ने सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू देहत से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: ला पर पर गड्डी लदिए पर पर पर ये साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड्डी खात पर ये है जेते वर्ष वर्ष पर ये जेते मास पर ये जेती यार जा पर ये जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों बेदाल जेक होय तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा को रे रंग ना सोए पैविच खुमचड़ा ये सरुपतन होए नान पक्ति जे रपे कूड़े सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

पहला दुख दारू सुख रोग पे जा सुकाम ना होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जोत

0: तुबा पूरा तपे का सतगिर तुबा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुबा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच में आशय सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भगत करनी।

0: ब्राह्मण वट्टे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है उह तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं। इन्हां सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसने वृथा कोई ना है
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अविनाशी प्रभ आपे आप
1: आपन की या कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचै कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: रब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: सब कुछ तिसका दिया धर पै
1: हत सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो होए वह दाथार
0: इस देन हार जाने का वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़त रह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: जिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिल लाई है
0: गुर बिलखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग तू तिसे चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: लपट रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माहे
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आदि मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताके सतगुर हार
1: है तन साध के धोए धोए पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंक बिगन ते साधु राख
0: है अर्गुन गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वाल नहार
0: भूखे को दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका वो करना है जोग
0: जिस बिन दूसर हुआ न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: शक्ति उज निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोचा निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जिस दिन आवे हर प्रभ चीत
1: भक्त भक्त सुनिया तेह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सकता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ तिन
0: सब बुझाए नानका जिस होवे सो परसन अष्टपदी
1: अविनाशी ब्रह्म मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: इससे परे नाहीं किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन ए नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याय त्याय भक्तां सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जा की लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जा को परमाए
0: जन्म रेफर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे थिन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाउ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के धारे सगले जंत
0: नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के धारे आकाश पाताल
0: नाम के धारे सगले आकार
1: नाम के धारे पुरियां सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: सत के वर प्रधान
1: करतूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: इसकी सिफ्ट सो करना हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत सुभावे सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्मात
0: जिन बुझिया तिस आया स्वाद
1: सब कै रंग राज जन रहे
0: गुर कै वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जग कै संग तरै संसार
1: जन का सेवक सो वट भागी
0: जन कै संग एक लिव लागी
1: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: ताद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत परसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत ध्यानहार
1: आप सत सत सवधारी
0: आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: बुजनहार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: कर्ण करावन तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजाय ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस गडाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: रब का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समारै
1: अपने जान का पर्दा ढाकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम पाई
1: अपने सेवक की आप रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काट थे आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात
1: मारे न रख है अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: मते मन तन तरपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम तन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: मूर्त बैठ शोभत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रबे अपने जन की नींदा
1: करे भक्त आत्म कह चाई
0: रबे अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रबे अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सोजन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गावे अष्टपदी
1: सतगुर सिख की करे प्रतपाल
0: सेवक गौर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष्ट न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ
0: अनक बार गुर को बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश परम
1: सह सियान पले आन जाई है
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शित चरण गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव तिस लय मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुर अपने
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावै जन कोए
0: अमृत पीवै अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन प्रगटे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया कै संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम बहुत दुख ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निरपो होए बसै
0: सगल व्याद मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दा सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अबरो पाप सब मीत बसारो,
0: शर्म कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो प्राप समर्थ,
0: निरकर गहो नाम हर बथ,
1: केहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुट उठतावे,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अनको पावी रोग न जाये,
0: रोग मिटे हर अवखत लाये,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते अवैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: अवबिन से पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: मत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उदार,
0: हर हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मन वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: गल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कमल सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कमल छटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भक्त बिना भव डूबे सियाने,
1: हर की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहि,
1: आप जपो अबरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संत करो व्यवहार,
0: हम सकदर गय जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रव्याप,
1: अंत विसार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करिया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म श्रद्धा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एक ओट एक आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सोए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: गब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भगती नाम समाये,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सोको बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जिन सब किश दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह राख है,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जनम जनम का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरा तत एह बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: ऊट जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो वतनास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों पेख दर सुख होए,
0: मन पिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दी जय करमया,
0: गुर प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आत पुरख कारण करतार,
0: जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपे सो हो पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसन्न गीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो बात हनुमंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक।

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਾਰੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧੂਰਾ, ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ, ਮਰਨ ਵੀ ਅਧੂਰਾ। ਮਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਹਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਚੋਲਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਲਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਭ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸਰੀਰ, ਮਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਭ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਖੜਾ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਰੀਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਇੰਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नूं समझदा कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं होंदी। वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं है, इनू कहिंदे ने जीवन मुक्त। हंकार ते मर गया है, तन अजे जिंदा है, इनू कहिंदे ने जीवदियां जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए। बंधना दे चे नहीं जी रहा, हंकार दा बंधन आउंदा, लोभ दा बंधन आउंदा, वासना दा बंधन आउंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे, बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान होवेगी। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी, रोज रोज तन बुढ़ा होंदा। रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, हंकार छोटा है, जवान है। हंकार जवान हो गए, लोभ जवान हो गया, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है, रोज रोज हंकार दी ताकत वधदी है, रोज रोज लोभ दी ताकत वधदी है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदियां लोभ बलवान होंदा है, अहंकार बलवान होंदा है, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, कोई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, हंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी हंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनैतिक लोग ने ना 97% बुढ़े रहे, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰੀ 97% ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ ਵੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੰਡੀਏ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਪਿਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੋਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਆਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ये लोभ करके नहीं आए, पर उपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा, मन दा एक बहुत छोटा जिया भाग कीर्तन सुनदा है, कथा सुनदा है, पाठ सुनदा है, मन दे नौ हिस्से नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यो मन के, मैं मन दी हालत किनू दसा, किसनों दसू? बिरथा कहो कवन स्यो मन के, लोभ ग्रस्यो दसहु दिस धावत, आसा लाग्यो तन की हर वक्त धन दी आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए ने, आसा धन दी है, धर्म दी नहीं है। आसा पदार्थां दी है, परमात्मा दी नहीं है। आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दसहु दिस धावत, आसा लाग्यो तन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा, बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिले उतना ही दुख मिले। चलो मैनू कहण देना ते माफी मैं पहले मंग लवां, कोई मनुख कितना दुखी है देख लेना कितना धनवान है, बस जिन्ना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दीसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इस तरह के बंदे किधरे गुरुद्वार भी गुरुद्वारे भी आ जान, किथे प्रभु का चिंतन करते ने, अपनी चिंतावां च ही डुबे होंगे, उन्हों का मत्था ही दसता है, अपनिया चिंतावां च ही गर्क होंगे। बिरथा कहो कवन स्यो मन के, लोभ ग्रस्यो दसहु दिस धावत, आसा लाग्यो तन के, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार सोन ज्यों डोलत, नै सुध राम भजन की, मानस जन्म अकारत खोत। एना कीमती जन मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की, हरिदा जस गाते हरी हो जा। परमात्मा दे गुण गाते परमात्मा हो जा, क्यों नहीं करता? निकल जाए ना चिंतावां तो, इस बोझ तो, इस दुख तो, इस संताप तो। इस तरह की विद्या ज्ञान शिक्षा देन वास्ते ये परोपकार वास्ते अवतारी पुरुष आ जाते हैं, वरना इन्हों आन की लोड़ नहीं तो मुक्त आते हैं। मुक्त पुरुष किधरे भी जा सकते हैं। रविदास कहते हैं, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे। कोई अटक नहीं, कोई रोक नहीं। एक ते जीवन मुक्त, जो मुक्त हो चुके ने, कोई रोक नहीं, किसे मंडल च जा सकते ने, कितने भी जा सकते, भ्रमण कर सकते। एक उन्होंने भी कोई रुकावट नहीं आती जिन्हों को तन ते नहीं आता। तन के अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है, जिन्हों इनरल बॉडी करके कहिंदे ने, संस्कारां दा मुजस्मा जिस विच मन है, वह होंदा तन नहीं आता। एक तरीके की हवा आती है। यह तुसी कथा सुनते पए हो, ये पेट दे च जाएगी, खून दे च जाएगी, मांस दे च जाएगी, हड्डियां च जाएगी, कतई नहीं सूक्ष्म शरीर दे जाएगी। अगर सुन रहे हो कीर्तन तुसी सुनते हो, कोई पेट भर जाएगा? अगर पेट भर जाएगा तो फिर लंगर कानू चलाया, किस वास्ते चलाया? कीर्तन नाल नहीं पेट भरदा, पेट पाठ नाल पेट नहीं भरदा, कथा नाल पेट नहीं भरदा, जप तप नाल पेट नहीं भरदा, लंगर चलाना पैंदा, पंगत बनाई सतगुरु ने। एक कथा कीर्तन जप तप मन दी खुराक है, तन दी नहीं है। पर मन खांदा नहीं, इस वास्ते सतगुरु कहिंदे जे को खावे
जे को भुनचे तिसका होयो उदार, कोई खावे ते सही है, नहीं खाते। मैं फिर अर्ज करा, मन का एक छोटा जिहा भाग किधरे पाठ दे चाहुंदा है, बाकी नहीं आता। मन का एक छोटा जिहा भाग गुरबारे आंदा है, बाकी नहीं आता। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जाती नहीं, मन विच प्रवेश नहीं करती। ते जे हुण भोजन दी बुरकी तन विच गई नहीं, ते खून कित्थों बनेगी, मास कित्थों बनेगी। गुरु दा शब्द मन विच गया ही नहीं, तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी, बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा। शब्द मन तक नहीं जांदा, ना जाण दा एक कारण भोजन दी भुख तन नूं लगदी है, शब्द दी भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम दी भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वह मनुख जिन्हों नाम दी भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिलम का माना, कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्होंने उत्ते तन का अस्थूल तन का बंधन नहीं होंदा। इस अस्थूल तन की अपनी सीमा है, सूक्ष्म की सीमा नहीं, किधरे भी जा सकता है। ये सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां कोल होंदे, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने। परमात्मा विच जी रहे ने, परमात्मा विच विचर रहे ने, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा। किधरे किधरे फिर इस तन विच आके जन्म ले लेंदे ने। वासना वस होके नहीं, परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए। ते मैं ये अर्ज करा, सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरां तो इलावा कुछ होर भी आउंदे ने, देवतियां दे, भूतां ते प्रेतां दे। उन्हां कोल भी ये तन दा बंधन नहीं होवे आउंदा, जिथे चान जा सकते हैं। यह भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहते हैं, जिथे रामायण की कथा होवे उथे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहें जे ना आख्या करो, अगर ये कहते हो तो हनुमान मुक्त नहीं होया। अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटक देन, भूत प्रेत भी भटक देन। इंज आख जिमें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान दी तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण दी कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहिंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहिंदा जिथे सतसंग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां आउंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां आउंदियां ने जो मुक्त नहीं होईयां। जैसे 100 मील की वाट होवे ते कोई 90 मील चले आए ते शरीर का अंत हो गया, शरीर की उम्र इतनी सी, 10 मील की वाट ते रह गई, वो तो तय करनी है, तो उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पएगा। ते जिहड़ा इतना चल चुका है वो हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है, तिन धन जने दी मां आए सफल। क्योंकि देवता पवित्र मन दा मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनूं इंज कहण देना, पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल सिर्फ मन है, तन नहीं है। मनुख कोल तन भी है, मन भी है। आप सारे सियाने बैठे हो, बुनियादी गल नूं पकड़ना। पशु कोल तन है, मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है, हाथी कोल है, घोड़े कोल है, पर विकासशील

पर देवते वास्ते कोई देवी मां चाहिए। पहले चुनाव मां का, क्योंकि मां के गर्भ में उसने प्रवेश करना है। मां बाप की वासना, इसकी जन्म की वासना, कि तिना का संगम बन के इसका जन्म होगा। जैसे गुलाब का बूटा बंजर जमीन च नहीं पैदा होता, देवते नो जन्म जनी खनी मां नहीं कर सकते। देवते नो जन्म देने वास्ते कोई खास मां। इसनो मिर्जा गालिब एक होर ढंग नाल बयान करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं फिर अर्ज करा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। ये संगीत हर साज ते नहीं गाया जा सकता। हर मां देवते नू जन्म नहीं दे सकती। इस संबंध च गुरबाणी च बड़ा कुछ है। मैं इस वक्त इस पासे गया तो इसे पासे ही चला जावांगा, मूल गल रह जाएगी। पंडित दया राम जी गुजरात के एक चंगे भगत होए ने, वो कहिंदे ने, प्रेम सोनीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। ऐ मां ऐसा पुत्र पैदा कर, प्रभु दा नाम सुने अश्कबार हो जाए, बिरही हिरदा रब वासे तड़प उठे रो उठे। रोंदे ने लोकी, कोई औलाद की खातर रो रहा है, कोई कारोबार की खातर रो रहा है, कोई परिवार की खातर रो रहा है, कदी कदाई कोई मिलता है रोंदा होया निरंकार की खातर, कदी कदा। प्रेम सुनीर बहे जस गावत, नाचत देव चले सब अंगा। इस तरह का भगत पैदा कर, जे नहीं तो कह खग गैरण में भलीस दिन, लहू सो घाव चले अर्धंगा। ऐसा सूर बीर पैदा कर, रणभूमि दे च रोम रोम उसका जख्मी होवे, पिठ फिर भी ना दिखावे, अणक उसकी बनी रहे। ते जे ए भी नहीं ते विद दोए बूत जने जननी, जन और सवे सुत कीट पतंगा, ते फिर कीड़े मकोड़िया जन्म देने नाल की होना, धरती का बोझ ही वधाएगी और की। कहन देना अजोकी औलाद, जब मैं सुनदा पांच दस मुंडिया ने एक मुंडे नू रेल तो गिरा दिता मासूम, पांच दस बच्चियों की इज्जत लुटन की कोशिश की थी बिहार के नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, तो कहना पै गए भूत प्रेत ने कि बंदे ने मनुख ने। इन्ने गंदियां आत्मावां किसी गंदी मां दे राही आईयां ने, यह भी मैं जिक्रां। एवें नहीं एशिया दे बैड़े पुत नू वेख के मां नू गाल कढ़ दे, मां नू गाल कढ़न दे पिछे एक बहुत वड्डी सच्चाई है। ऐसी भैड़ी आत्मा नू जन्म दिता, तेरी गोद इतनी गंदी, तेरी कुख इतनी मैली। खैर मुक्त सरस का गुरु रामदास जी का भी शब्द सामने है, जिदे आसरे ते मैं कह सकदा कि मैं गलत नहीं कह रहा। जिन हर हिरदे नाम ना वसियो, तिन मात कीजे हर बांझा, तिन सुन्ये दे फिरे बिन नावे, ओ खप खप मोए करांजा। अवतारा नू जो जन्म देंदी है, अवतार करोड़ां च कोई एक आउंदा है, अवतार नू जन्म देने वाली मां भी कोई करोड़ां च एक आउंदी है। तिन जन जने दी मां आए सफल से, इतनी बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसी परम पुरख नू उड़ीक दी है। खैर ये स्वतंत्र आते ने मुक्त रूहां, क्योंकि धर्म का मूल ते दया है, संतुष्टि है।

0: इन आत्मावां कोले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है, दया है। एक दफा मैं फिर दौड़ा दें ताकि मजबून पकड़ दे चाह जाए। पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है, तन नहीं है। इज कह ले उदे कोल असवार ते बड़ा सियाणा है, फुरतील है, पर उदे कोल घोड़ा ही कोई नहीं, वाहन ही नहीं है। इंज कह ले केवल मनुख है, इदे कोल तन भी है, इदे कोल मन भी है। इस तन दी बड़ी महिमा, बड़े भाग मानुक तन पावा, बही परापत मानुक दे होरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस देही दे राही ए मन तू गोविंद तक पहुंच सकता है। ये देही इतनी महान है, इस देही को सिमरे देव, देवते तरस देने। देवते सूक्ष्म शरीर है, किसी भी तकनी महान होवे, देखनी महान होवे, जिन्हों कहने दिव दृष्टि, दिव दृष्टि, देवतियां नू देखण दी दृष्टि, मनुखा ने देखने की दृष्टि है, किसी को नहीं आती बेचारे को, जिन्हों असी नेत्रहीन अंधा कह दें, कोई गल दृष्टि साढ़े को है मनुखा नू वेखण दी। पर जिहदे कोल देवते नू देखण दी दृष्टि आती है उन्हू कहिंदे ने इहदे कोल दिव दृष्टि है, देवतियां नू देखण दी दृष्टि है। जद कहा जांदा जिथे रामायण की कथा होवे उथे हनुमान बैठा होंदा है, ये ते अतकथनी है। हनुमान जैसे प्यारे भगत जो मुक्त नहीं हो सके होंगे, हनुमान ते मुक्त हो गया, ते जे नहीं मुक्त हो गया ते इन्हू इतना वड्डा संत ते उन्हू पूजन दी भी फिर की लोड़ है। नहीं, वह एक मुक्त आत्मा, उन्हू विचकार लियाण दी लोड़ नहीं आउंदी, पर लियांदे ने शायद इस वास्ते लोकां च राम दी श्रद्धा वधाई है, पर थोड़ा जिहा सोच विचार करने वाले मनुख दे अंदर ते श्रद्धा घटेगी वधेगी नहीं। जैसा प्यार हनुमान दे अंदर सी, इस तरह दे प्यार रखण वालियां दा किधरे शरीर दा अंत हो गया, मन प्रभु तक ना पहुंच सकिया, तो ये देवते कहलांदे ने, भटकदे ने। तो देवते सिखां च भी आउंदे ने, मुसलमानां च भी आउंदे ने, हिंदुआं च भी आउंदे ने, पारसी यहूदियां जैनियां बोधियां च भी आउंदे ने, भटकदियां होईयां ए रूहां देवते। तुसीं आखोगे मैं कहिंदा की पिया, एक बहुत प्रबल सच्चाई है जिसनूं संसार विच उजागर बहुत घट कीता गया, बहुत घट कीता गया है ना, भरिया पिया, खला कुछ भी नहीं है। कुछ मनुखां दे मंडल ने जमीन, कुछ देव मंडल ने, देवते रहिंदे ने, फिर कुछ रूहानी मंडल ने मुक्त आत्मा लीन हो चुके परमात्मा च, और वो ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल ना को अटकावे, सब महरम ने कोई अटक नहीं, जिथे जान जा सकते जा सकते। इस तरह दियां आत्मावां जो मुक्त नहीं हो सकियां ते देवते ने, देवते तो मुराद ज्ञानी ने, दीवा जले होया पवित्र ने, जन्म ले सकन उस तरह दी मां मिलेगी ते होएगा। जने हर किसे मां दी गोद दे राही और जगत विच नहीं आना चाहते, तो उतने दिन तक फिर किथे रहन, ए फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहंदे ने, अपने अपने मजहब संस्कारां दे मुताबिक, अपने अपने धार्मिक केंद्रां दे च रहिंदे ने, सुणदे ने, आनंद लैंदे ने। मन उन्हां कोल है, तन है नहीं, भुख प्यास लगदी नहीं, भुख प्यास तन नूं लगदी है, हवा तन नूं चाहीदी, ऑक्सीजन तन नूं चाहीदा, सूक्ष्म शरीर नूं नहीं। चूंकि तन है नहीं तो तन दी कोई भुख प्यास नहीं, तन दी कोई लोड़ नहीं, पर सूक्ष्म शरीर दी लोड़ ते है। कथा कीर्तन जप तप जांदे ने, उत्थे ही रहिंदे ने। एक दूसरे ढांचे भी आउंदे ने, बहुत मलीन, बड़ा कसाई, बड़ा दुष्ट, महान ठग, बड़ा कातल यही करदा रहा है। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ ਚ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਚ, ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ ਚ, ਹੋਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ 2-4 ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ 700-800 ਸਾਧੂ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 25-30 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਸਕੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਤਨੀ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਰੇ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਜਾਵਾਂ ਘਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਜ ਖੂਬ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਗਏ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਸੱਜਣ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਐਸਾ ਲੰਗਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਮਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਲੋਈ ਮਿਲੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਰ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਚ ਹਰ ਕੀਆ ਭਯੋ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਭੈੜਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੈ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤੇ ਨਮਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਜੋ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਨਰਗਿਸ ਆਪਣੀ ਬੇਨੂਰੀ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਚਮਨ ਮੇ ਦੀਦਾਵਰ ਪੈਦਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ। इस तरह दियां आत्मावां दा आवना रोज रोज नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज जन्म लैंदे ने गुस्ताखी माफ। इस तरह दे फुल्लां दा जन्म कदी कदा, ये अवतार कहलांदे ने, ये वासना वस हो के जन्म नहीं लैंदे। फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा? हंकार वस हो के जन्म नहीं लैंदे। हंकार ते इन्हां दा मर गया, वासना ते इन्हां दी मर गई, लोभ ते इन्हां दा मर गया। शरीर दे होंदे आए सब कुछ मर गया सी, ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर दे अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म दे। फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया? ये दया वस हो के आ जांदे, तरस खा जांदे। जगत नू जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दियां ठोकरां खांदियां देख के तरस खा के फिर आ जांदे ने। तन दी अपनी उम्र आउंदी है जिहड़ा मिलदा है उहनां नू, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नू दस तनां दा, दस शरीरां दा इस्तेमाल करना पिया। संत बनाना है, उसे संत नू सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा कम पूरा करिए। मनुख नू पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये ढाई पौने 300 साल दी अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करा। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के, साधना कर करके, अमृत वेले उठ के, सवेरे शाम सत्संग करके, हर वक्त मन नू प्रभु पासे ला के, इसे जीवन विच मुक्ति पा लई है। इन्हां नू कहिंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नू कहिंदे ने मुक्त ते हो गए सन, फिर आ गए। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए होवेगी। साधना कर करके, जप तप कर करके मुक्त हो गए ने, पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने। पर ये दोबारा आनगे के नहीं आनगे, इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने, संत ने, परम आनंद देच ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुकुत ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे, कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जांदा है ते उहदे अंदरों भगवान दा गीत संगीत निकलदा है, भागवत गीता निकलदी है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, ये भी मर्ज करदे हैं, गीत ने। नानक भाव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, केड़े गीत? जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। इह जिहड़े मुक्त पुरुष आउंदे ने, भगत लोग आउंदे ने, इन्हां नूं फिर विद्वानां ने दो हिस्सिआं च वंडिआ। एक ओ जो रोजमर्रा जगत नूं संदेश उपदेश देंदे रहे, और उन्हां दे अंदरों गीत संगीत जन्म लैंदा रहे। भावें चौक दे च बैठ के जोतियां ही गणदे ने रविदास, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कपड़ा बुणदे ने कबीर, लेकिन भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें सारा दिन कपड़िया नूं रंगदे ने, छिमदे ने, नामदे, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी। इन्हां दे गीतां दे च भगवान आउंदा, इन्हां दे बोलां दे च भगवान आउंदा। कुछ ऐसी श्रेणी भगतां दी जिन्हां कोल शैली शब्दावली अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, प्रभु दा ज्ञान आउंदा, वो फिर नहीं बोले, नहीं बोलते, चुप रहते हैं। उन्हां दी खामोशी भी कुछ ना कुछ वंडदी रहती है, जैसे खिड़िया होया फुल, उहदी खामोशी भी महक वंडदी रहती है। सुगंध वंडदी रहने। चूंकि इस तरह के पुरुष बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कहते नहीं, तो समाज के जमीन के उत्ते उहदे कदमां दे निशान नहीं बनते। यह भी मैं अर्ज करदा, ये भगत दूजी श्रेणी। एक तीजी श्रेणी मैं हुणे अर्ज कीती है, धार्मिक विद्वान पुरुषां ने मनुखां नूं पंज हिस्सिआं च वंडिआ है, ते हुण गिणती तुसीं अपनी कर लेना, इन्हां पंजां दे च असीं किहड़ी श्रेणी चाहुंदे हां। तीजी श्रेणी परमात्मा ते श्रद्धा भी है ते शक भी है, मन मनदा भी है मन इनकारी भी है। मन उही कुछ मनदा जो मन दे अनुकूल है, मन उस नूं इनकार करदा जो मन दे अनुकूल नहीं। श्रद्धा भी है शक भी है। ये श्रेणी सब तो ज्यादा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे करीबन करीबन बहुते इन्हां नाल ही भरे हुए ने। गुस्ताखी श्रद्धा भी है शक भी है। गुरु नूं मत्था भी टेकना, गुरु की गल भी नहीं मनने। गुरुद्वारे भी आना है, गुरु नाल जुड़ना नहीं है। श्रद्धा भी है शक भी है। इनू मैं इस तरह बयान करदा हुंदा, कोई एक कदम अगे चले एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले एक कदम पिछे, सारा दिन इस तरह चले तो कित्थे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा। मेरिया इन्हां अखां ने देखिया, चाली चाली साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, चाली साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। चाली साल पहले भी प्रबल लोभ नाल भरे हुए सन, अज भी लोभ नाल भरे। चाली साल पहले भी हंकारी सन, अज भी हंकारी ने। चाली साल पहले भी भिकारी सन, अज भी भिकारी ने। कुछ भी चले भी बहुत ने, थके भी बहुत ने, टूटे भी बहुत ने, पहुंचे क्यों नहीं। एक कदम अगे एक कदम पिछे, एक कदम अगे एक कदम पिछे। दान पुन भी कर लिया, पाप भी कर लिया, ईमान भी प्रगट किया, बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया, हत्थ च गुटका रख के पाठ भी कर लिया, गंदे गीत भी अलाप ले। श्रद्धा भी है शक भी है। एक कदम अगे एक कदम पिछे, ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा। तो इस तादाद दे चां कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन, मौलवी बन गया, कोई फादर बन गया, कोई गुणी ज्ञानी बन गया, कोई पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा नूं जाणिया ते है नहीं, जाणिया ते कख नहीं, जाणन की कोशिश पे करदे, समझिया ते कुछ भी नहीं, समझाण की कोशिश पे करदे, खुद नहीं समझिया। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया, उही जगत नूं मनाना चाहुंदे ने। गुरु नानक कहिंदे ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है। श्रद्धा भी है शक भी है, शक भी है श्रद्धा भी है। इस वास्ते दान पुन भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जपतप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ऐ नहीं। ऐलानिया कहिंदे ने कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब, अजोके नौजवान कई मिलदे ने, मैं ते सुन के हैरान होना। मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ है गुरुद्वारे जाने की। जिवें मन का चंगा होना बच्चों का खेल है, खिडौणियां दी खेड है। दिन रात साधन करन वाले विचारे अपने मन नूं शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए जी, मन शुद्ध होना चाहिए। इस तो गल स्पष्ट हो गई, अजे इन्हां विचारियां नूं मन का नहीं पता, सिर्फ तन का ही पता। अजे सिर्फ तन की भज दौड़ है, अजे सिर्फ तन दियां लोड़ां दी चिंता है, अजे इन्हां नूं मन का कुछ भी नहीं पता। जो इस तरह कह रहे हैं जद कदी मन नु देखन गे ते पता चलेगा असलियां समस्यावां ते मन दे चले, चिंता ते मन दे चे, भय ते मन दे चे, विरोध ते मन दे चे, प्रबल वासना ते मन दे चे, प्रबल अहंकार ते मन दे चे। ए मन मनुख कोल बड़े अनर्थ कराएगा, बहुत अनर्थ कराएगा। नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं, साड़ा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, यह भी मैं जोर। और कम्युनिस्ट कहते ने पता है की आखते, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ, गुरबाणी नू की करना है, कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते हैं। और दलील देंदे ने, चार दिन पानी ना मिलिया पंजवें दिन मौत हो जाएगी, सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है, कुछ भी नहीं घटता, इंज कहते हैं। जेब दे च धन नहीं है तो जमीन ते चार कदम चलना औखा है, हिरदे दे च धर्म नहीं है सारी दुनिया भ्रमण करके आ जाओ, इंज कहते हैं। पेट दे च भोजन नहीं है, जीवना बड़ा औखा है, काम करना बड़ा औखा है, जबान ने भजन नहीं किया कि घट गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लमकावे ना समय हो गया, मैं अर्ज करा, भोजन ना मिलिया तन मरेगा, भजन ना किया जमीर मरेगी, इंसानियत मरेगी, मनुखता मरेगी। ये जीवेगा तो सही जीवदा तो रहेगा, पशुओं की तरह जीवेगा। करतूत तो पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिलिया तन मरेगा, वाह कई मरेगा। गुरबाणी का जाप ना किया मनुखता मर जाएगी, आखा जीवा बिसरे मर, मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर नु भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर नु भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर नु भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर नु भुला के कोई सुखी हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे दुख उसनु चमणगे, परमेश्वर ते उन्या व्यापन सबेरो। एक चौथी श्रेणी, लोड़ ही नहीं है, नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं है। एक पंजवी श्रेणी, इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय ही नहीं है, इसते शक कीता जाए या श्रद्धा कीती जाए, इदे बारे सोचिया जाए, इत कोई ऐसा विषय ही नहीं है। ये पंजवी श्रेणी, जिन्होंने भूल के कभी इस संबंध सोचिया भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया, ये पांच श्रेणियां हैं। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है, असी किस श्रेणी चाहते हैं, असी केरी क्लास दे विद्यार्थी, किस क्लास दे, चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है, दूजा की जाने, थानू की पता मेरे मन दे च की चलता रहिंदा, मैनू की पता थोड़े मन दे च की चलता रहिंदा। तो खुद ब मुनसफ शब्द, अपना मुनसफ आप बनो, अपना फैसला आप कर, साहब रहमत करन। अस इस दूजी श्रेणी च आईए, धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों नू अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव नू मना के, जिस तरह भाई गौंदे ते बख्शिशा होईयां, ए गुरु हर राय साहब अज साडियां भी झोलियां भरना, तेरे दर तो खाली ना जाई, श्रद्धा नाल भर जाए साड़ी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साड़ी झोली, जो शक शुभे अंदर ने, हे धन गुरु हर राय साहब इसनु कढ़ो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बाकी विचारा मैं थोड़े सामने आज शाम नू रखांगा, ये फैसला तुसी आप कर लेना, जिस श्रेणी च हो। जिन्ने चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बने, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। भगत मुक्त हो जाता है एक दिन, तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुक्त है। तो जो मुक्त है दी मर्जी नहीं, वासना इसनों जन्म देवेगी और ये भटकेगा, हंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा। हमें यही बंधना फिर फिर जोनी पाए, मुड़ मुड़ जोनिया भटकता रहेगा। साहेब रहमत करन, बख्शिश करन, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे। असी जीवन मुक्त बन के जीवन का लाहा खट सकीए, जीवन नु आनंदित बना सकीए, संसार दे आण दा मनोरथ जो है वो प्राप्त कर सकीए। इतनी सेवा प्रवान, सारेयां दा बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी शमा, वाहिगुरु,
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581 1900

बेडर तोरा नीला चोला छे फुट जो साला सिके हाथ च तीर ते वांग गात्रे रखिया।

हस्त खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदे आ, प्रभु दे गीत गाउंदे आ, क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगा रहे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी, उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी, उस तो दुखत होके आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां दे चों तके मार के कट देने। ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी, उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आपदा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है, और मंदिर दा जो मुख द्वार सी, उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी दे, औरंगाबाद रोड देते एक गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ये प्रभु दे गीत गाए, ते आप नूं तके मार के बाहर कढ़िया गया। ये मंदिर इतिहासक मंदिर है, और कस्बे दा नाम औंडा है। महाराष्ट्र दे बेशुमार तीर्थां दे चों ये अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है, और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर दे अज बनया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन, तां आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तों बाहर स्थापन कीती हुई है, और दूरों ही पुजारी आवाज मार दें, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ये अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ये अजूबा कहिंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नूं जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पिछे जा बैठे, तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव दी तरफ ही कर लिया। खैर महाराष्ट्र देच भ्रमण करदे आ, प्रभु गीत गाउंदे आ, आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है। उदे शरीर दे चों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, वो आस पास दे माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर दा कहना है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी, पवित्र होएगो ग्राम। देही दा ते कहना कि एक सुरत होके जो प्रभु गीत उचारण करने ने, प्रभु सिमरन करना है, उदे नाल ते सारा नगर पवित्र हो जांदा है, सारा शहर पवित्र हो जांदा है। तो नामदेव ने थां थां ते महाराष्ट्र देश भ्रमण करना आरंभ कीता। इस तों बाद आपने समस्त भारत दा वी रटन कीता। दहली दे जद आप आए, ते आप दे
ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ, ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ, ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਹੱਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਜ ਹੱਠ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੱਠ ਆਪਸ ਦੇ ਚ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਹੱਠ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ, ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਹੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਤੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਾਇਆ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜੀ ਬ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ। ਮੈਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਖੜਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਖੜਾ, ਐ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਟ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਵਾਦੀ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸੀਤਲਤਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਇਹ ਜਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਸੇਠਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲ ਲਾਓ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰੋ, ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਗ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਤੀਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਧ ਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ, ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦਹਿੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਧਨੀ, ਦੇਹ ਲੇਹ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ, ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੋਂ ਹਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਰਟਦਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਬਰ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ। ਤੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੂ ਨਾ ਆਏ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਧਨੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋੜਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਉੱਠ ਖੜੋਈ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੂਲ ਪੈ ਗਏ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜਾ। ਹਰ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਡਰਪੁਰ ਆਏ। ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਔਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੀਂਬਾ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲੇਰੇ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਾਰਕਿਕ
पुरोहित लोगों ने विद्वाना ने आप तो पूछया कि तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल किवें जोड़े की युक्ति है की युक्ति है आखिर ढंग की वर्त है तौर तरीका की वर्त है तौर तरीका कबीर तो भी किसी वक्त पूछया गया से ता आपने साफ कह दिता सी तज भरम करम बिद निखेद राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने बिद निखेद बिधि निषेद कोई विधि नहीं है कोई ढंग नहीं है कबीर कहते हैं कोई ढंग नहीं है भरे आया ठंडा पानी दा गिलास मनुख दे अगों रख दई है ते ओ पीण दा ढंग पुछे विधि विधान पुछे कि पीण दा ढंग की है विधि की है तो गल स्पष्ट हो गई कि इस बंदे नूं प्यास नहीं लगी 36 प्रकार दा भोजन परोस के किसे मनुख दे अगों रख दई है ते ओ ए आखे कि छकण दा ढंग की है भोजन करन दा ढंग की है ते गल स्पष्ट हो गई इसनूं भुख नहीं लगी भूखे खावत लाज ना आवे भुखा मनुख ढंग नहीं पुछदा हुंदा तौर तरीका नहीं पुछदा हुंदा ओ छकण लग पैंदा खाण लग पैंदा ढंग तौर तरीके दा पुछणा ही इस गल दा सबूत है कि इसनूं भुख नहीं लगी श्री नामदेव जी महाराज तो ए पुछ कीती गई ढंग की है तौर तरीका की है कबीर कहिंदे जद मनुख दे अंदर सत्संग करदे आ प्यास पैदा होंदी है भुख पैदा होंदी है ते भुख पैदा होंदे ही ओ ईश्वर दे गीत अलापन लग पैंदा है ओ ईश्वर दा नाम उचारण करन लग पैंदा है जैसे भुख लगे ते बच्चा रोण लग पैंदा है सत्संग विच बैठदियां जद सत दी भुख पैदा होंदी है ते रसना अपने आप ही सतनाम उचारण करन लग पैंदी है तरीका आपदे कोल पुछया गया दसो नाम देव तुसी अपना हिरदा परमात्मा नाल किवें जोड़े है आखिर एक नियम है कि दोहां नूं जोड़न लई तीसरे दी लोड़ पैंदी है दो इट्टां नूं जोड़ना है गारा चाहिदा है दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिदी है दो कपड़ियां नूं जोड़ना है सुई धागा चाहिदा है दो लकड़ां नूं जोड़ना है सरेस चाहिदी है तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल जोड़िया है किवें जोड़िया है तो आप दा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च बड़ा कीमती वाक है कि सोए ने की सोई रुपए का धागा नामे का चित हर सौ लागा नामदेव ने अपना चित हरि नाल जोड़ लिया है किवें जोड़िया है किस तरह जोड़िया है सुई धागे नाल सी लिया है सुई केड़ी सोने दी धागा केड़ा चांदी दा सोयने की सुई रुपए का धागा नामे का चित हरसों लागा सोने दी सुई की है गुरु दा शब्द गुरु दा मंत्र गुरमन मंत्र ए सोने दी सुई है धागा की है उहदे च ध्यान जोड़ना उहदे च सुरत जोड़नी ए धागा है जैसे वाहेगुरू वाहेगुरू दा उचारण करिए इते सोने दी सोई है पर इहदे च ध्यान जोड़िए ए धागा है ते ध्यान दे नाल ही मनुख सुन सकेगा उंज सुन भी नहीं सकेगा जैसे कि एक उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है दूसरा सुन रहा हुंदा है ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा है मित्रा ए गल फिर आखो नहीं सुनी क्यों नहीं सुनी कहिंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया तो ध्यान धागा है इसनु गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी तो गुरु दा जो मंत्र है इस सोयने दी सोई है और इस दे विच जो मैं अपनी सुरत जोड़ी है ध्यान जोड़िया है ए धागा है सुई चलदी रही धागा नाल चलदा रहा मेरा हिरदा प्रभु दे नाल सिलदा गया जुड़दा गया आम जगत विच देखण विच आया कि मनुखां कोल सुई ते है धागा नहीं राम राम रटन कर रहे ने ध्यान नहीं है वाहेगुरु वाहेगुरु दा उच्चारण कर रहे ने ध्यान नहीं है तो सोने दी सुई ते चल रही है धागा नहीं है बिन धागे बिन सुई आनी धागे तो बिना सुई की करे किस तरह सीवेगी किस तरह जोड़ेगी
तो धुन देच ध्यान दा जोड़ना, शब्द देच सुरत दा जोड़ना, मंत्र देच ध्यान दा जोड़ना, इंज है जैसे सुई देच धागा जो है परोरना है। ते इस ढंग नाल जद सुई चल रही है ते नाल धागा चलता है, मनुख दा हिरदा प्रभु नाल जुड़ जांदा है। यही आप कह रहे ने, सोईने की सुई रुपे का धागा, नामे का चित हर सौ लागा। हरि नाल चित जुड़ गया ते हरि ते आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप नाल जुड़दिया ही आनंदमयी अवस्था मनुख दी बन जांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा भी फरमान है, चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना, परमात्मा दे चित नाल तू अपना चित जोड़, अथा रंग बनेगा, अथा सुख बनेगा। क्यों के मित का चित अनूप सो मरम न जाने, परमात्मा दा चित अति सुंदर है, आनंदमयी है, रहस्यमयी है, गुण निधान है। प्रभु दा ऐसा चित जेदे सारे गुण ने, सारा आनंद है, सारिया सुगंधियां ने, सारा खेड़ा है, सारा स्वप्न है। जैसे कोई प्रभु दे चित नाल अपना चित जोड़दा है, जगत दी सारी स्वप्न नाल उसने अपना चित जोड़िया, जगत दे सारे संगीत नाल उसने अपना चित जोड़िया। जैसे उस परम संगीत दे नाल ते परम स्वप्न दे नाल चित जुड़दा है, मनुख दे अंदर भी परम स्वप्न ते संगीत दा जन्म होंदा है। मित का चित अनूप सो मरम न जानई, गाहक गुनी अपार सो तत्व पछानई, चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना, हरहा चंचल चोरे मार ता पावे सुख घना। चूंकि परमात्मा दे चित देच परम नाद है, परम संगीत है, उस नाल जुड़दे हां, परम संगीत दियां धुनियां मनुख दे अंदर वजनियां शुरू हो जांदियां ने। उसदा जिक्र श्री नाम देव जी महाराज अपनी बाणी च इंज करदे ने, अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई। मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है, नामदेव कहंदे ने, लेकिन वह चमड़े का मड़िया होया नहीं है, पर वज रहा है, अठे पैर वज रहा है, बड़े सुर दे च वज रहा है, बड़े ताल दे च वज रहा है। अणमड़िया मंदल बाजे, अज तक दे तमाम सिरमोर भगतां ने ऐसा आख्या है कि साडे अंदर संगीत दी धुन चलदी है, राग दी धुन चलदी है, ते राग दे जन्मदाते भी संत लोग ने, भगत लोग ने। दरअसल परमात्मा की है परम सुंदरता और परम संगीत, परम रस, परम आनंद। परमात्मा नाल जुड़ना परम आनंद नाल जुड़ना है, परम संगीत नाल जुड़ना है, महान स्वप्न नाल जुड़ना है। ये ठीक है कि पुराने समय दे वैदिक ऋषियां ने भी जो ईश्वर दे गुण मने ने इस ढंग नाल मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, सुंदरम वो अति सुंदर है। सत चित आनंद वो सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत सुहान सदा मन चाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, वो सत है सुहान, वो अति सुंदर है, सदा मन चाओ वो सदीवी खिड़िया है, उसदे चित दे सुंदरता है, दैवी गुणा दी स्वप्न है, परम संगीत है। तो परमात्मा नाल जैसे कोई जुड़दा है, परम संगीत नाल जुड़दा है, परम स्वप्न नाल जुड़दा है, परम आनंद नाल जुड़दा है। इस वास्ते नामदेव जी महाराज कहंदे ने कि मेरे अंदर परम आनंद दी छाप लगी है और मेरे अंदर दैवी गुणा दी परम सुंदरता प्रगट होई है। आप ते साफ कहंदे ने, प्रण में नामदेव ना के बिना ना सोहे बत्ती लखणा। शरीरक तल ते अगर सुंदरता दे बत्ती लखण भी मनुख दे कोल आवन, पर दैवी सुंदरता दैवी गुणा दा जो स्वप्न है ए बंदे कुल ना होवे तो 32 लक्षण भी किसे काम दे रहे। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना सब कुबज करूप। पावे कितना ही सुंदर होवे, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मेरे अंदर परम स्वप्न पैदा होया है और परम आनंद पैदा होया है, ते परम संगीत दियां धुनियां मेरे अंदर पैदा हो गई ने, नाद वज रहा है। अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घन हर गाजे, बिना सावन तो
मेरे अंदर बदल गरजदे पैने। कबीर अंबर घन हर छाया, बरख बरे सरताल, चात्रिक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल। गुरु रूपी बदल मेरे अंदर गरज रहे, परमात्मा दा गर्जन शुरू है और अमृत नाम दी बरखा मेरे हृदय ते हो रही है। परम संगीत परम नाद मेरे अंदर छिड़े होया है और इथों गल स्पष्ट हो गई, प्रभु नाल जुड़ना परम संगीत नाल जुड़ना है, परम हरियावल नाल जुड़ना है, परम आनंद नाल जुड़ना है, परम स्वप्न नाल जुड़ना है। श्री नामदेव जी महाराज दे अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल दे ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वह मनुष्य ही नहीं है, वह पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तां जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तां समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समां लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उस नूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है, हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुन दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे च ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे च ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारिए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े हैं, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ, ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਇੰਜ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦਾ ਬਛੜਾ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਛੀਣ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਬਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ, ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਿਆ, ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਰਧਾ ਛੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੜਪਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਪੂਰਵ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ
श्री रविदास जी महाराज कहंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही। ए भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने, जीवदे ने हिरदे दे तलते, भावना दे तलते, और जद भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने, तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने, जो ज्ञान फुटदा है, वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ां दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है, आम गाथा है, और वो भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया, नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दिती, ठाकुर दी सेवा करी, घर विच मूर्तियां रखियां सन, ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है, पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है, ते ठाकरा नू इशनान कराणा है, बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने, बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाणा है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, चूंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है, तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं नाम आ, ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंदन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने, ब्रह्म मुहूर्त विच गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए ने, गागर खूब मांझी है, इशनान कीता है, गागर नू भरे है, ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उना ते पै गई, कुछ कछुए सन उना ते पै गई, आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया, आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक, ठाकर कोई स्नान करो, पर 42 लख जीव जल में होते, बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र विच प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दाई आप प्रयोग करदे ने, बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बीठल मंदिर पंडरपुर विच, और ओ तीर्थ है, और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, ऐ बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरया है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा की पानी पवित्र नहीं है, क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे च ने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने, जन्म उना दा पानी दे च, जीवन उना दा पानी दे च, मरण उना दा पानी दे च, सारी क्रिया पानी दे च, और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनिया ने, जेदे चो 42 लख जल दे च ने, 21 लख थल जंतु ने, और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है, पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने, जद जीवन पानी दे च है, जन्म पानी दे च है, मरण पानी दे च है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा, ये ते अपवित्र है। हे प्रभु, मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना, खाली गागर लेके आ गए, और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है, ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा, पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है
غالباً 11 سال دی عمر دے چھ.

आप देखने आई एकदम हैरान होए कि शहद दियां मखियां भी फुल्लां दे चों रस कढ़ रही ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने, इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने। इन्हां दे चों रस ते शहद दियां मखियां कढ़ के लै जांदियां, तितलियां कढ़ के लै जांदियां। लिहाजा इन्हां फुल्लां दी माला परो के हे ठाकर मैं तेरे गले किस तरह पावा जदके इन्हां फुल्लां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लैंदे ने, तितलियां पहले ही कर लैंदियां, शहद दियां मखियां पहले ही कर लैंदियां ने। आ नीले फूल परोई ले माला ठाकर की हो पूज करो पर पहले बास लई है भौरे बीठल भेला काहे करो। हू बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोविंद पूजा कहा ले चराओ अवर न फूल अनूप न पाओ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तैनू इशनान करावा, ओ ते जल अपवित्र कर दिता है, मीन ने फूल ते अपवित्र कर दिते ने, भौरिया ने, तितलियां ने, शहद दियां मखियां ने। हुण आप नू ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी कपिला गऊ दा दुध ठाकरां नू पिलाना है, तो अपनी माता नू आख्या गऊ चो दिओ दुध चाहीदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थन चुंगन लग पिया है, ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नू कहिंदे ने पहले ए बछड़ा दुध पिएगा। हां मेरे बच्चे पहले बछड़ा दुध पिएगा ता ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहन लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिदा, इस दुध दा भोग मैं ठाकरां नू नहीं लवाना। क्यों? आ नीले दूध रिधाई ले खीरन ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बितारो बछरे बीठल भेला काहे करो। हे बीठल दस मैं की करा, ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें पवित्र कर दिता है। थना देच दूध ता बछरे थनो बिटारे हो, भगत रविदास जी महाराज कहने ने। आनी ले दूध रिधाई ले खीरन ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बिटारे हो बछरे बिठल भेला काहे करो। ए बिठल दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी पर इते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना देच ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखिया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच दे च पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां दे च आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर धुनि इंज उठी, ईबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा पूर रहो तू सर्वमही। हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनू इशनान करावा ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल दे इशनान कर रहे हैं, मैं तेनू की इशनान करावा। हे प्रभु जद मैं तेनू सोचया तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा ता ए भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनू कराया जांदा है जो मैला हो जाए, क्या तू मैला हो जाना है। साहिब कहंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण, तू दाता तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने हैं, सड़ा तन मैला सड़ा मन मैला। हे प्रभु तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने इशनान ते मैं तेनू तां करावा कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं, और तेनू की इशनान करावा, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनू की इशनान करावा। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल विच तू
ਮੱਛੀ ਰਿਛ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਈ ਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸ

और नहीं थान थनंतर प्रणवे नामा पूर रहो तो सर्वमही। श्री रामदेव जी महाराज अगा फुल्ला बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनू फुल्ला दी माला बना के पहनावा ते तू तितली होके शहद दी मक्खी होके भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचया तेनू दुध पिलावा पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना गौ तू बछड़ा तू दुध तू तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेवया ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नू, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक बुत जाहिद फिदाए खान का, हर को जा जामे मुहब्बत दीदायम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों और मुस्लिम लभदा है तेनू खान का दे चों, पर हर को जा जामे मुहब्बत मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वह मंदिर है चाहे वह मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया ना देहोरा ना मसीद। तो फिर किथे है जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है। तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट देच बोल रहे है। और राम तो बिना कौन बोल सकता है, राम ही बोल रहे है। पशुआं देच राम ही बोल रहे है, पक्षियां देच राम ही बोल रहे है, मनुखां देच राम ही बोल रहे है, पवन दी शां शां देच राम ही बोल रहे है, सागर दे गर्जन देच बदलां दे गर्जन देच, और सागर दी गर्जन देच ही नहीं प्रभु बोल रहा है, कोयल दी कू देच बुलबुलां दे चहचहाण देच, हे प्रभु तू ही ते बोल रहे है। सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, हे प्रभु तू ही बोल रहे है, सब घट दे अंदर बोल रहे है। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चल रही है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनता है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनता है। ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर जाता है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा,
जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जद चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल दे च ऐसा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आरंभ कर देईए, बस आरंभ कर दें ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनु खोले है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है ओ परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग ते उड़दियां ही मार्ग बनदा है, चलदियां ही मार्ग बनदा है। इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदियां ही जपदियां परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदियां ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे। और भ्रमण करदियां करदियां अनेकां नूं आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता। और लीन करदियां करदियां एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए, उस प्रभु विच लीन हो गए। और ए लीनता ऐसी होई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।

0: इस नु खरीदन जा वेचन लई तुहानू चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे जिस ते तुसी भरोसा कर सको जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
1: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
0: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नु
1: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।